0: Dad.
1: What's wrong, beta?
0: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
1: I will run down to the money exchange now.
0: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
1: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
0: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410।
3: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
4: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे की ता अपना जिव तिस दी वड्याई।

राहत जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवरा।

कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनात जुग जुग एको वेस एक दूजी बो लख होवै लख होवै लखवीस लख

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल तिस विच जी जुगत के रंग।

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: History divided a nation, but could never divide humanity.
2: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
1: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara, 1947.
3: वो माँ है माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए.
1: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol, and Ali Fazal.
3: और बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है.
1: Produced by Amir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara, 1947. Releasing in cinemas on August 14th.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
6: कॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
7: बीकानेर वाला परंपरा भी.
8: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट, हाउसलो, TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
9: मेगा ब्लॉकबस्टर धुरंधर. Mega Blockbuster Dhurandhar, 15th and 16th of August at 9 PM on Utsav Gold. Title sponsor Watchdog Security, associate sponsor Lemfi.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner Ragasan. Leica Extra Podcast, be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Wake up, feel good. It's Donny Brasco on Breakfast.
11: Leica Radio.
10: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
12: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: से,
1: सेट को माइक्रोवेव फूड कंटेनर,
0: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए,
1: जहां जिंदगी वहां सेट को माइक्रो
2: न्यू फील्स गुड
3: feels good.
4: Fly on Air India's new fleet to India and enjoy world-class cabins, gourmet meals and warm hospitality. New feels good on Air India. TNC apply.
5: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
6: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
7: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
8: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
9: History divided a nation but could never divide humanity.
10: Kaun si azadi aur kiska mulk?
9: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
11: Wo maa hai maa. माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
9: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
11: हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लव्स माँ है।
9: Produced by Amir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Releasing in cinemas on August the 14th.
12: Wake up, feel good. It's Donny Brasco on Breakfast.
13: Like a radio.
14: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Any idea what the Ghana is? Davinder has got it right as well. Gargi's got it right. Good morning to you as well. And Safina's like, Donnie, I've got it right too. Where's my shout at? Actually, where have you got it right? You haven't. No, I take my shout out back, Vapastor. I'm not giving you a Mufti Lal shout out.
1: Brasco on Brekkie. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: Dad.
4: What's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
6: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाउ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
7: History divided a nation, but could never divide humanity.
8: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
7: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara, 1947.
9: वो माँ है माँ! माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए।
7: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
9: हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है।
7: Produced by Amir Khan, experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947, releasing in cinemas on August the 14th.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
10: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
11: ईमेल नाउ info@royalchayvending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
12: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
13: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
14: New feels good. Feels good.
15: Fly on Air India's new fleet to India and enjoy world-class cabins, gourmet meals and warm hospitality. New feels good on Air India. TNC apply.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donnie Brasco on Like a Radio. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
16: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at quality food branches
2: Dreaming of paradise?
3: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
2: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
3: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
2: At all protected.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
5: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410
6: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.

0: सपनों में रोज आए, इट्स फाइन, मैं रेडियो पे रोज आती हूँ. आई मीन यू डोंट हैव टू लुक दैट हार्ड फॉर मी. आल्सो फन फैक्ट, यू नो व्हाई सलमान खान वाजंट वेयरिंग a top in this song? Because his costume didn't arrive on time, and the one that arrived was too tight. What a lovely, lovely coincidence for us. We like it.
1: Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: The Golgappiyan da Pani.
1: All Monster products are nut-free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Avara Pani 2.
3: Usse mujhe chua, par apna aaya nahi. To phir...
2: Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
4: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलिडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
5: Hey, Vishpatnaga here. Remember to join me on Reload every weekday from 1 p.m. until 4 p.m. on Leica Radio.

0: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
1: बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम।
0: इट्स अंताक्षरी टाइम विद

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: History divided a nation, but could never divide humanity.
2: कौन सी आजादी और किसका मुल्क?
1: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
3: वो माँ है माँ, माँ को

0: मुसलमान में ना बांटी है।
1: स्टारिंग शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, करण दियोल एंड अली फजल।
0: हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है।
1: प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान। एक्सपीरियंस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ करेज एंड होप पटवारा 1947 रिलीजिंग इन सिनेमाज ऑन August 14th।
2: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T&Cs अप्लाई।

0: ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Mamster products are nut free and made in Canada now available at quality food branches Khatron ke Khiladi Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV powered by Star Tours associate sponsor Lionecroft
2: खिलाड़ी मीनार ज्वेलर्स अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com कॉल 0208-767-7627
3: Like a Radio Network proud hospitality partner Ragasan Extra podcast. Be a part of the conversation. Details at LaikaRadio.com and the Laika Radio mobile app. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.
5: Yo, yo, yo, yo.

0: Book now. Visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
2: बीकानेर वाला परंपरा भी
3: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे टेस्टी स्नैक्स मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB कॉल 0779518100
4: Mom always said beta clove and neem keep the mouth healthy now that same trusted wisdom comes from Baidyanath over 100 years of ayurvedic legacy in siddha toothpaste fresh breath strong gums pure herbal care available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK Siddhayu Ayurveda that fits your life
5: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
6: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
7: We're not having that, are we?
6: No. Oi, hear that? It's water and cans.
8: And fix those drips and drops.
9: And take shorter showers, yeah?
10: Because when we work together,
11: it all adds up.
12: So come on, you lot. Search. Let's.
13: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
14: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
15: ये बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
16: पवन जी मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है
17: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो
18: भाई निकाल माइक
19: भाई भाई के प्यार कितना सुंदर
4: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV
0: Leica Radio Network proud hospitality partner Ragasan Feel good track Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ਅਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: अल नूर पुराना बाएतमाद नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस

पासे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: The sounds of love in London.
2: Laika Radio.

0: One performer.
1: के सामने तो पड़ोसन से कहने क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी
2: Countless personalities.
3: जिंदगी बर्बाद हो गया.
0: A whole universe of entertainment.
4: फंक्शन रखा हुआ है.
2: Sunil Grover live UK tour 2026.
0: 29th October Over Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
0: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
0: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
0: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: पवन जी मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है
9: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो निकाल माइक
10: भाई भाई के प्यार कितना सुंदर
0: The brand new reality TV show Bhoj Puri Bawal Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
11: Packed for the trip? Gifts? Passport?
12: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
11: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
12: Simzy?
11: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
2: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.